हमेशा हमेशा तू मुझ में रहेगा, कहाँ यहाँ। आत्मैन आत्मैया अभी मैं भी दिया हम बुना कहे दीदा मिथन दिम में विधि हटम ओ मिथन दिम में विधि हटम अभी गया आत्मैन हम बुना।

सोबरमंदरम रात्रियक वेवतारंगा समर हैंगम तिबना नमक नदन मालवा के सुंदर पामना की तरीके राहदेवते गैंबोर रख पिपुनो किस सिंदो स्पर्शक न मतिवा आदेवत तुले रेंदुन सीतलक किसी दिवेन वीमक न मतिवा आत्मे पुराही में वीमक नमलांगनाते मोहतक नवा नमलांगम सिटी न मोहतक मट मावत आई में वियाना अरुम बुद्धम निहंड तावयक क्या न तवचन से हुए में अकुरुत रहित संगवा ऐ थंगुमाक बारे वैदिवो वीट वचन पावा गलो ना समारो रिदुम ते बनो कांदला कट्टा वत नो ऐहरे ना समार माते दिए ना मत के कलत नो मैं के ना ऐ हम दे मत्री मम थो मत हो यान नुम्बे वेद माव दरनता नुम्बलांगते वीतरक मटे देनो नुमाव द अलावेन नदी

मुझे याद है ओ मत मत खाए उदासन दहावलक रात्रियक गत कले मने ओबेन तोरवा मट के अंदर मगे अत्वल अंदर रेखा अमतक करने के लिए ओब मगे दाइवया ओब मगे इरनमा इतिंको हम अमतक वेन्ना दा हाँ मुझे याद है